0: अमृत वेला सचना वरियाई विचार
1: कर्मिया वे कप्रन अद्रिमोप्तुआर
0: नानके वे जानिए सत आपे सच्यार
1: तापिया न जाए कीतना हो

0: लग जाने कोय
1: लेखा लिखिया खेता होए
0: केते तांस्यारियो रूप
1: खेती डाचने कंकुर
0: कीता पसावे कोकोवाओ
1: तिस्ते होए लक्तर्याओ
0: कुरित खवं कहा विचार
1: वरियन जावा एकवार
0: जो तु पावे से बलिकार
1: तु सरा सलामत निरंकार
0: असंक जाप संक पाओ
1: असंक पूजा असंक ताप ताओ
0: असंक कुरिया मुवेत पत
1: असंक जोग मन रहे उदास
0: असंग पगे गुंगियन विचार
1: असंग सतिया असंग दातार
0: असंग सुर मुबक्सर
1: असंग मौन लिव लाए तार
0: कुरित कवं कहा विचार
1: वरियन जावा एक बार
0: जो तु पावे से बलिकार
1: तु सदा सलामत निरंकार
0: असंग कमुर राम मकोर
1: असंग चोर हर मकोर
0: असंग कमर का जाए जोर
1: असंग कलवाद हाथिया कमाए
0: असंग पापी पप कर जाए
1: असंग कुरिया करे फिराए
0: असंग मलेच